0: के डूब गई सही मुहा।
1: सॉरी किड, कबालो का नमन दामो पा को संग गिना असिकासो सा बलाय
0: अमो बला ओते अनु को गिना होला तो सिकिन प्लीज बोल गना कौ हाउ को सही मु।
1: दाली दाली।